रक्स करें, आओ सेने चमन में रक्स करें, साज लेकर घटाएं आती हैं, देखकर उन